0: लाइका रेडियो।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Laika Radio.
4: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर। यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ordinary.
3: Radio Wally takes you on a journey of hit tracks every evening at 7 p.m. Oh, I care.

0: is Leica Radio.
1: काम कर गई दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए मोमिन की दुआ।

ना भी जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए के जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवे ता बात ना पूछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनिए।

मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट।

पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहावी।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साह पत साहिब नानक रहन जाई।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख लख।

जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती छिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथे सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवे निशान। कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापे जाए।

0: मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: अबीरा, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803EE392 एंड TV, प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नैटको फूड्स।
5: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Back to back hits across the Leica radio network.

0: ये धड़कता है फ्रॉम द मूवी आशिकी, द वोकल्स ऑफ अनुराधा पौडवाल एंड कुमार सानू. यस, अनुराधा पौडवाल इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक एट लाइक अ गोल्ड.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: ¡Excelsior!
1: Good morning. स्वागत है आपका मनोरंजन की दुनिया में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड के गोल्डन गीतों का खजाना खुला है और रवि शर्मा अब लुटाने चला है। यस, दैट्स माय नेम। और बहनों भाइयों, अब से लेकर के दोपहर बाद एक बजे तक ब्रिटिश समय के अनुसार मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, लेकर गीत, संगीत, सूचनाएं, समाचार, चिंतन, विचार, कुछ चटपटी और कुछ अटपटी बातें और कुछ भाई गोल मटोल से गीत। भाई आज छुट्टी का दिन है ना आपका, आपका छुट्टी का पड़ा तो ड्यूटी का दिन है, ड्यूटी पर पहुंच गए हैं। बहुत सारे लोग हैं भाई जो काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि आप लोगों से भी मुलाकात कर ली जाए। वो जो काम पर चले जाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, दफ्तर में होते हैं, सर क्या करें, बॉस घूर के देखता है जब हम रेडियो लगाते हैं तो, अरे बॉस की वो वाली, वो आप समझ गए होंगे, मेरी तरफ से सुना देना दो उसको। दरअसल बात यह है साहब के हर शख्स को जहान में इज्जत नहीं मिली, पैसा मिला, दुआओं की दौलत नहीं मिली, यू भागते ही भागते काटी है जिंदगी, माँ बाप से भी मिलने की मोहलत नहीं मिली। इतना रहा मैं बिजी कि सर ना खुजा सका, नहीं ऐसी बात नहीं, अरे नहीं आप गलत ले रहे हैं भाई, खुजली नहीं है मेरे को। इतना रहा मैं व्यस्त के सर ना खुजा सका, ये कहावत है, मुहावरा है, सर भी ना खुजा सका, खुद से भी मुझको मिलने की फुर्सत नहीं मिली। देखा है खुर्दबीन से, दूरबीन से 100 बार झांक कर, इन लीडरों में मुझको शराफत नहीं मिली। हम 8वीं में फेल हुए सिर्फ 4 बार, बन जाते हम वजीर ये किस्मत नहीं मिली। चलिए साहब, खासकर उन श्रोताओं से मुलाकात करें जिनसे हम अक्सर नहीं मिल पाते।
2: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Your feel good bank holiday weekend. Leica.
1: चलिए साहब, कार्यक्रम के शुरू में एक नेक काम कर ले, अगर वो इधर देखे तो हम उनको सलाम कर लें।

0: अरे सॉन्ग, और भाई ये गीत लिया गया था फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई। मेरा ख्याल है, सोचता हूँ शायद संगीत किसका रहा होगा, रविंद्र जैन साहब का या किसी और का, मालूम नहीं। पुरानी फिल्म है भाई, पुरानी फिल्मों से अपना इतना गहन रिश्ता नहीं है, लेकिन जो पहला गीत हमने सुना वो फिल्म आशा से लिया गया था। और भाई उस आशा फिल्म की कुछ शूटिंग तो माँ भगवती के दरबार में हुई थी, जहाँ वो गीत फिल्माया गया था, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, और कुछ शूटिंग उसकी मॉरिशस में भी हुई थी। मजे की बात है कि ये वो समय था जिन दिनों मैंने मॉरिशस का दौरा किया था, मैं वहाँ शो करने गया था, और वहाँ भाई इस फिल्म के कुछ हिस्से वहाँ शूट किए गए थे। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी आशा, जिसका गीत सलाम है से हमने सलाम किया, शुरू किया प्रोग्राम। और भाई दूसरा गीत था खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में, जिसके यशुदास, हेमलता और साथियों की आवाज़ें थी। और जब जब हेमलता की आवाज़ किसी गीत में शामिल होती है तो हम मान के चलते हैं कि संगीत जो है वो रविंद्र जैन साहब का रहा होगा। ऐसा दो गीत हमने आपको परोस, मुझे यकीन है आपको पसंद आए होंगे। और भाई अब याद दिला दूं आपको कि 11 बजे की खबरों के बाद होगा चिंतन, और अब से थोड़ी देर बाद यानी 10:30 बजे आप सुनेंगे आज के दिन के साथ जुड़ने वाले प्रमुख समाचार। तो दोपहर बाद 1 बजे तक आपको रेडियो की वो सुई को हिलाना नहीं है, डटे रहिएगा मैदान में, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और रीज साहब, अब वो पाउंड का देखें क्या भाव चल रहा है आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK, yani State Bank of India UK.

0: दे रहे हैं एक पाउंड के बदले आज 128.15 रुपीस। भारतीय करेंसी में 128.15 का रेट चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ भाई कुछ और इन्होंने जोड़ा, एक जबरदस्त ऑफर है इसके साथ। सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन 75 pounds वाउचर डेली व्हेन यू सेंड ओवर 1,000 pounds एंड 1 gram gold एज वेल, 1 gram gold कॉइन इफ यू सेंड ओवर 2,000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। सोच लीजिए भाई, ये मौका जून के एंड तक है, इसका फायदा उठाइए।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is Leica Radio.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.

0: गा पम पद पद नी धनी सा पसानी सा पसानी सा पसानी सा मैं कहां पता कहां पता कहां पता
1: वी आर ऑस्ट्रिया में सुन रहे हैं हमें सोनी जी और अनिल सोनी जी या कवाली आपके नाम। कोई कॉमेडी सीक्वेंस रही होगी फिल्म में भाई। महेंद्र कपूर मंडाडे और साथियों की आवाज में यह कव्वाली हमें इस मोड पर ले आई है कि 10:30 बज चुके हैं, खबरों का वक्त हो गया है भाई। ब्रिटेन में आज मेट ऑफिस की यह चेतावनी है कि आज मई महीने का सबसे गर्म दिन हो सकता है, सोच लीजिए। मैंने कहा था ना कि मौसम आज रिकॉर्ड बना सकता है, पर लेट्स सी, गर्मी काफ़ी होगी, वार्निंग दी जा रही है भाई। इंतज़ाम रखिएगा अपना, पानी वानी साथ रखिएगा और भाई धूप में जितना हो सके कम निकलना पड़े तो अच्छी बात है, तो ये व्यवस्था रखिएगा। आज मई महीने का रिकॉर्ड बन सकता है गर्म दिन का, सबसे अधिक गर्म दिन हो सकता है लंदन व आसपास के इलाकों में खासकर। इसके अलावा और क्या है भाई आज के दिन के साथ जुड़ने वाली खबरों में, लेट्स फाइंड आउट।
2: Brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
4: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Laika Radio Network. अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान आज जंग खत्म करने के लिए किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं। मार्को रूबियो ने दिल्ली में प्रेस से बात करते हुए कहा कि हम अभी भी इस पर काम कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, हमें लगा था कि शायद कल रात कोई खबर आएगी, लेकिन शायद अब आज आ जाए। मार्को रूबियो ने कहा कि हमारे पास एक मजबूत प्रस्ताव है, प्रपोजल है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने और तय वक्त में न्यूक्लियर मुद्दों पर बातचीत शुरू करने जैसी बातें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को खाड़ी देशों में और दुनिया भर में बहुत हिमायत मिली है, समर्थन मिला है। हम हर देश ने इस सिर्फ बल्कि सारी दुनिया के लिए इसे एक जरूरी कदम माना है, तो हमारी ये मान्यता है। आपको याद दिला दें कि मार्क रूबियो जो है वो दिल्ली के दौरे पर है, भारत की यात्रा पर गए हुए हैं और वहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा। और क्या कहा भाई, भारत दौरे पर गए अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को लेके क्या कहा। मार्को रूबियो ने दिल्ली में आज कहा कि भारत हमेशा पाकिस्तान की जमीन से चलाए जाने वाले आतंकी संगठनों को लेकर के चिंतित रहता है। जब उससे पूछा गया कि भारत ने पाकिस्तान के अमेरिका और ईरान विवाद में बिचौलिया बनने पर कोई चिंता जताई है, तो उन्होंने साफ किया कि इस मुद्दे पर भारत ने कभी शिकायत नहीं की। रूबियो ने प्रेस से कहा कि भारत हमेशा ये बात उठाता रहा है कि पाकिस्तान की धरती से आतंकी संगठन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं जो भारत को निशाना बनाते हैं, लेकिन जहां तक ईरान मामले में पाकिस्तान के रोल को बिचौलियों के तौर पर देखते हैं तो उस पर हमारी कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत इस पर शिकायत करेगा कि उनका मुद्दा पाकिस्तान से अलग है, कभी नहीं करेगा भारत शिकायत। आपको बता दें कि मार्को रूबियो 23 मई से 26 मई तक भारत की यात्रा पर है, कल उनका आखिरी दिन होगा यात्रा का। बतौर विदेश मंत्री भारत की ये उनकी पहली राजकीय यात्रा है। भारत से आने वाली खबरों में, कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार की आलोचना की है और कहा है कि महंगाई मैन की वसूली थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल आज पेट्रोल की कीमतों में और थोड़ी बढ़ोतरी हुई है और डीजल की कीमतों में भी 2.73 रुपए का जो है वो इजाफा हुआ है। अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 102 रुपए और 12 पैसे हो गए। लोग चिल्ला रहे हैं भाई बहुत महंगाई हो गई है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि महंगाई मैन मोदी ने पेट्रोल डीजल 11 दिन में 8 रुपए महंगा कर दिया है। खेलों से जुड़ी एक खबर है, देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार ने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है पोल वॉल्ट में। रांची में चल रहे हैं 29वें नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन मुकाबले और उनके चौथे दिन पुरुष पोल वॉल्ट में स्पर्धा में कंपटीशन में दो एथलीट्स ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। असम सरकार ने आज यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर एक बिल विधानसभा में पेश किया असेंबली में, जिसमें एक से ज्यादा शादियों पर रोक लगा दी है और लिव इन रिश्तों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन करने की भी बात कही गई है। कांग्रेस समेत कई अपोजिशन पार्टीज ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इसे लागू करने से पहले सभी पक्षों में चर्चा होनी चाहिए थी, जबकि चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि पहली बार बिल में लिव इन रिश्तों को कानूनी रूप दिया जा रहा है। अनिवार्य यानी जरूरी रजिस्ट्रेशन से पार्टनर्स और ऐसे रिश्तों से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों को मान्यता मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दुख जताया है कि परीक्षा को पेपर लीक की वजह से रद्द करना पड़ा। आपको बता दें इस पर काफी हंगामा हुआ था और जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराध्य की पीठ ने निराशा जताई कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं सीखा। ओडिशा से राज्यसभा के मेंबर देवाशीष सामंत राय ने बीजू जनता दल पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। समझा जा रहा है कि शायद वो बीजेपी ज्वाइन करें, लेकिन इस बारे में अभी तक उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर चीन के दौरे पर गए हैं। इससे पहले वो ईरान के दौरे पर थे, जहां उन्होंने जंग खत्म करने की दिशा में बातचीत आगे बढ़ाई है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पहले ही 23 मई से 26 मई तक चीन का दौरा वो कर रहे हैं, पहुंचे हुए हैं। शहबाज शरीफ चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इन बैठकों में ईरान अमेरिका जंग एक अहम मुद्दा है। फाल्टा विधानसभा सीट के नतीजे आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान आया है, बड़ी जीत की है बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, और प्रधानमंत्री मोदी से लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि फाल्टा के लोगों ने अपनी बात कह दी, डेमोक्रेसी की जीत हुई है और डराने वालों की हार हुई है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं, आई लव प्रधानमंत्री मोदी, आई लव प्राइम मिनिस्टर मोदी। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री को वो बहुत पसंद करते हैं और भारत अमेरिका पर भरोसा कर सकता है। दरअसल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक समारोह हो रहा था। इस दौरान अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने लाइव कॉल के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को समारोह से जोड़ा, यानी टेलीफोन कॉल मिलाई। ट्रंप ने कॉल पर कहा, आई लव प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरे दोस्त हैं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। भारत और अमेरिका कभी इतने करीब नहीं रहे। भारत मुझ पर और हमारे देश पर 100% भरोसा कर सकता है। थैंक यू ट्रंप साहब। और युद्ध को लेकर के उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं जल्दबाजी में कच्चे समझौते नहीं करता। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
2: ये है लाइका रेडियो, टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

ये गीत सुनना चाहा है नॉर्वे में सिल्विया और उनकी बहन म्यूरियल। कहती है हमारी दादी आई हैं लंदन से हमारे पास, और दादी दादी बहुत अच्छी हैं लेकिन कान की कच्ची हैं, दादाजी से लड़ती हैं। तो अब हम दादी को मना रहे हैं और ये गीत सिल्विया और म्यूरियल की ओर से दादी आशा शर्मा के नाम लगा रहे हैं। मान जाओ

0: दादी अम्मा दादी अम्मा मान जो। पहले महिला जब शादी के थोड़े ही बरस गुजरे होती हैं, थोड़ा ही वक्त हुआ होता है, तो पति से झगड़ा करके मायके जाती हैं, लेकिन जब दादी बन जाती हैं तो फिर झगड़ा करके वो मायके वाला रास्ता तो बंद हो जाता है, फिर वो बच्चों के पास जाती है, फिर पोते पोतियों के पास जाती है, और वहां जाके फिर पति को फोन करती है कि जी मुझे वापस बुला लो, जल्दी बुला लो। क्यों भाई, अभी तो गई हो, थोड़े दिन तो रुको वहां। नहीं नहीं नहीं, जल्दी बुला लो, यहाँ पे मैंने मम्मी से लड़के देख लिया, मैंने यहाँ बहन से लड़के देख लिया, भाभी से लड़के देख लिया, मायके से फोन करके कह रही है मुझे आके जल्दी ले जाओ, यहाँ लड़ाई में वो मजा नहीं आ रहा है जो आपके साथ लड़ने में मजा आता है। स्वादिष्ट गीत सुनो आया हमने आपको भाई, और ये गीत था सिल्विया और म्यूरियल की ओर से उनकी दादी के नाम।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel, भाई बड़ा जाना माना प्रतिष्ठित नाम है, आपको बता दें वो कह रहे हैं कि make this summer memorable with Southall Travel. Explore beach breaks, city escapes and more with the holidays deals with the Southall Travel. But that includes यानी उनकी जो holiday deals हैं, that include flights, hotels and atoll protection. Trusted for over 40 years and winners of the British Travel Award. Visit Southall Travel or call 0208 574 8410.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: 105 शोज पूरा कर्या पछी हवे लेस्टर मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक
3: जेज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रे जो हसबंड जी
2: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनो फुल डोज 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मा बे शानदार शोज बपोरे 8 वागे अने सांजे 7 वागे टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655 मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk UK. Sakhna rahe jo, husband ji.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
4: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 711,000 pounds.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Packed for the trip? Gifts? Passport?
7: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
6: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
7: Simzy?
6: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
8: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: Ek aitihasik ane divya avsar. Paris ma bhavya BAPS Swaminarayan Mandir na grand opening ma darshan no lab. Aap pavitra yatra ma jodao apna parivar sathe. Jyan madshe shanti, bhakti ane anand. Ane sathe Eiffel Tower, Seine River Cruise ane Paris City Tour no anand mano. Departure 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
1: लाइका रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन
12: dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
13: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
14: माँ को बोल कि जल्दी मच्छी लेकर आए।
15: हो हो, अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊंगा।
16: नाम परशुराम, अधर्म का करता हूँ काम तमाम।
14: अरे कहाँ हो तुम?
15: हो हो, आलो आलो।
16: परिवार उसके लिए चारों धाम, बाहर वो है परशुराम।
13: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsa Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE 392.
17: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां. मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से.
18: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
19: खुद से भी ज्यादा.
17: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में.
19: जो बात मेरे दिल में है वही बात आर्य सर के दिल में भी है.
17: क्या ये नजदीकियाँ बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुमसे तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT394.
20: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think, don't let your speed creep.
1: Like a radio network, broadcasting across the UK with Asian stations. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7 and with your favourite presenters live? Get the tune-in details at leicagold.com.
21: Oye, Chan ji, zara mudke to dekh.

स्वागत है मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। और बहन भाइयों, जो हमारे रेगुलर लिसनर हैं वो जानते हैं कि 11 बजे के खबरों के बाद चिंतन में हम कोई प्रेरक प्रसंग शामिल करते हैं या फिर किसी महापुरुष के जीवन से जुड़ी कोई घटना या कोई तीज त्योहार का प्रसंग। आज 25 मई को एक पर्व है बहुत बड़ा, गंगा दशहरा। और साहब, गंगा दशहरा, गंगा का नाम जिस पर्व के साथ जुड़ा है, पवित्रता का प्रतीक तो वो होगा ही। लेकिन आज की चिंतन के लिए सामग्री जिनसे मिली है हमें, पहले भाई उनका धन्यवाद करें और बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ मैं उनका नाम लेता हूं, डॉक्टर भूपेंद्र गिरी जी महाराज, गिरी आश्रम सिद्धपीठ, गंगा के ठीक सामने उनका आश्रम है। लेकिन भाई वो निरंजनी अखाड़े के बड़े प्रतिष्ठित संत हैं, फकीर हैं। और ऐसे जो संत हैं उनके दर्शन करने के लिए बता दूं आपको कि नागा साधु हैं, जब वो स्नान करने के लिए कुंभ में आते हैं तो लाखों लोगों की भीड़ उनके दर्शन करने के लिए जमा होती है। एक्चुअली कुंभ में प्रथम स्नान होता ही इन संतों का है, क्योंकि ये मैदान में कभी कभी आते हैं जमीन पर भाई, वरना ये पहाड़ों में कंदराओं में तपस्वी रूप से अपना जो है तपस्या में स्थित रहते हैं, वस्त्रहीन, बिना वस्त्रों के। अब पहाड़ों पर कड़ाके की सर्दी पड़ती हो या भाई आजकल जैसी गर्मी पड़ रही है, कुछ भी हो, इन्हें महसूस नहीं होती, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, जैसे मक्खन होता ना, संतों का हृदय ऐसा होता है, पर प्रताप सुसंत भाई कहते हैं कि निज प्रताप द्रवे नवनीता। मक्खन को गर्मी पहुंचाओगे तो पिघलेगा, लेकिन संतों को अपनी गर्मी तो कोई असर नहीं करती है, पर दूसरों को किसी कष्ट में देखते हैं तो वो पिघल जाते हैं, हृदय द्रवित होता है उनका। और परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय डॉक्टर भूपेंद्र गिरी जी महाराज। और भाई यंग एज में उन्हें सन्यासी की इस वेशभूषा में देख करके लोग सवाल करते हैं, अरे ऐसा नौजवान संत और इतनी कठिन तपस्या। और भाई पहले तो संत विदेश यात्रा नहीं करते थे, लेकिन अब तो जब यहाँ आईवर में अपने दर्शन दरबार में संत त्रिलोचन दास जी महाराज आते हैं तो भाई उन संतों का उनके पास आना जाना काफ़ी हो गया है, और वो अपने साथ संतों को लाते हैं, सत्संग जमाते हैं, तो धन्यवाद उनका। और भाई स्वागतम कहना चाहते हैं हम डॉक्टर भूपेंद्र गिरी जी महाराज के साथ साथ स्वामी राम जी को, जो झालूर धाम बरनाला पंजाब से आए हैं, झालूर धाम सिद्धपीठ से, और स्वामी अभिरामाचार्य प्रयागराज से आए हैं। स्वागत है संतों का। कहते हैं कि भाई प्रभु जब किसी का कल्याण करने के लिए कृपा करते हैं तो संतों से भेंट करा देते हैं, और ऐसे संत मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे जो भव दरिया के तीर। और डॉक्टर भूपेंद्र गिरी जी महाराज जब व्याख्यान देते हैं, प्रवचन करते हैं, तो भाई हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, अंग्रेजी, सारी भाषाएं जब वो इस्तेमाल करते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं, और क्या छवि है, इमेज है, एक संत का स्वरूप ऐसा ही होता है। तो आज भाई उनके आशीर्वाद से गंगा दशहरे पर चर्चा करते हैं, उन्हीं के व्याख्यानों से लिए हुए शब्दों को शामिल करते हुए। भगवान विष्णु के पादोदक यानी चरण जल से उत्पन्न तीन धाराओं में बहने वाली गंगा जी सदा आनंद प्रदान करने वाली हैं, विपत्ति से पार करने वाली और अनेक प्रकार के पापों को विनष्ट करने वाली निर्मल पावन पवित्र माँ गंगा। गंगा के प्रति ये भाव भारतवासियों का हमेशा से है। भारत के बड़े भूभाग को सींचती तो है ही, लेकिन उसे दैवी रूप, उसका जो ये स्पिरिचुअल स्वरूप है, वो इसलिए भी है कि पता नहीं कितनी तरह की जड़ी बूटियां उस पानी में मिली हैं कि आप बरसों तक उसे बोतल में बंद करके रखें, वो कभी खराब नहीं होगा, वो वैसा के वैसा फ्रेश बना रहेगा। इसीलिए उसमें कितने ही केमिकल्स भी अब तो पड़ रहे हैं, कई लोग अपनी अस्थियां भी प्रवाहित करते हैं अपने परिवार के बुजुर्गों की, लेकिन गंगा का जल स्वच्छ,
पावन पवित्र बना रहता है। और बहनों भाइयों, आपको बता दें कि आज तो नॉन प्लास्टिक डे भी है कि भाई प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें, नदियों में या सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम एक दिन के लिए तो व्रत कर लें कि आज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना ही नहीं है, छूना भी नहीं है, फिर उसको फेंकते हैं। भारत में तो इस तरह का अभियान चलता है। एक जागरूकता चिंतन के माध्यम से हम संतों की वाणी का इस्तेमाल करके आप तक पहुंचा रहे हैं। परम पूज्य डॉक्टर भूपेंद्र गिरी जी महाराज कहते हैं कि गंगा हमारी आत्मा है, गंगा हमारी माँ है, उनका आशीर्वाद उनकी पवित्रता हमारे साथ हो। गंगा दशहरे के भाई सबको बधाई। और आपको ये भी बता दें कि गंगा को धरती पर लाने के लिए ये जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें भागीरथ का नाम आता है। कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा गंगा आ तो जाएगी धरती पर, स्वर्ग से धरती पर आने में उनको हम मना लेंगे, लेकिन जिस रफ्तार से, जिस वेग से, जिस तीव्रता के साथ वो धरती पर आएंगी उसको धरती सहन नहीं कर पाएगी। पहाड़ों को तोड़ती हुई, जंगलों को कुचलती हुई, उजाड़ती हुई, उखाड़ती हुई जब गंगा आगे बढ़ेगी तो विकास के बजाय विनाश हो जाएगा। अब उसके प्रभाव को रोकने की व्यवस्था करो। तो फिर भागीरथ ने अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए वो गंगा को लाना चाहते थे। हमारे यहाँ हरियाणा में गाई जाती है एक रागनी, 60,000 सगड़ की बेटी जो मुक्ति का पागे धाम, अयोध्या के गौरे आके, गंगा जी धराया नाम, ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों भक्ति करते सुबह श्याम। गंगा वो शक्ति है, वो एनर्जी है, न सिर्फ भारत के लिए विश्व के लिए, क्योंकि गंगा जल आखिर में जाके जब समुद्र में विलीन होता है। गंगा सिंधु सरस्वती कावेरी जो जितनी भी महानदी हैं, क्षिप्रा वेत्रवती महासनदी क्षत्रा ख्याता चायगंड की पूर्णा पुरजली समुद्र सहिता कुर्वन्तु ते मंगलम। गंगा मैया अपने सभी स्वरूपों में स्थित होकर के सबका कल्याण करें ऐसी कामना करते हैं। तो भाई भगवान शिव की फिर आराधना की भागीरथ ने, और भगवान शिव ने कहा कि गंगा को मर्यादा में रखना मेरा कर्तव्य होगा। और फिर उन्होंने अपनी जटाओं से बांध कर, यानी ताकत जब किसी के पास होती है उसके साथ मर्यादा भी होनी चाहिए। यही डॉक्टर भूपेंद्र गिरी जी महाराज कहते हैं कि तप से हम शक्ति तो अर्जित कर लेते हैं, लेकिन उस शक्ति का उपयोग जो है कल्याण के लिए हो, हम मर्यादाहीन होकर के शक्ति का दुरुपयोग ना करें। जो शक्ति का दुरुपयोग करते हैं वही तो राक्षस बनते हैं, जो शक्ति का सदुपयोग करते हैं वो संत होते हैं, वो देवता होते हैं, वो महापुरुष होते हैं। तो एक बार पुनः भाई गंगा दशहरे की आप सबको बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, और प्रसाद स्वरूप आशीर्वाद स्वरूप संतों का ये संदेश आप तक पहुंचाते हुए कहते हैं हैप्पी गंगा दशहरा।

0: आज का चिंतन, आज का विचार भाई, गंगा दशहरा ये जो पर्व है, त्योहार है, इसके अवसर पर आज के दिन गंगा का अवतरण हुआ था। धरती पर आई थी गंगा, जिस वेग से आई भगवान शिव ने उसे मर्यादा में बांधा, यानी अपनी जटाओं में बांध करके फिर इस तरह से प्रवाहित किया कि वो विकास के लिए आगे बढ़े, विनाश के लिए नहीं। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया, बहुत सारे लोगों के संदेश आए हैं भाई, धन्यवाद करना चाहते हैं संदेश और आशीर्वाद के लिए डॉक्टर भूपेंद्र गिरी जी महाराज का। बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब भाई ऐसे संत मैदान में, जंगलों से, कंदराओं से पब्लिक में आते हैं, और विदेश में तो पहले आते ही नहीं थे, पर परम पूज्य संत त्रिलोचन दास जी महाराज की भाई कईयों के सहयोग से अब यहाँ संतों का आना जाना लगा हुआ है, सत्संग चल रहा है, धूम मची है। और गंगा का स्नान अगर संभव नहीं है तो भाई सत्संग का स्नान प्राप्त हो रहा है, ज्ञान की गंगा जो है बह रही है लंदन में। आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके साथ गीत हमने शामिल किया फिल्म गंगा तेरा पानी अमृतसर, रफी साहब और साथियों की आवाजें थी और संगीतकार रवि की बनाई धुन थी। इसी बीच जिन लोगों के भाई चिंतन की प्रशंसा में संदेश आए हैं उनमें निर्मला जी हैं, रानी जी हैं, अर्जुन उल्लास टोरंटो से, और भोगल जी, एसएस भोगल साहब धन्यवाद, जैस्मीन, जगदीश जी भूषी से, सुनीता शर्मा वत्सला थैंक यू कहती है, हमारा पावन इतिहास गौरव का विषय है, सबको गंगा दशहरे की बहुत बहुत बधाई। अमिता प्रीति बेल्जियम से प्रीति संदेश भेजती है, रागिनी हरविंदर, फतेह पटेल, अरुणा, भूपेंद्र और आनंद तोमर भारत से, रितेश जी, हितेश जी थैंक यू, गुजरात से आप संदेश भेज रहे हैं, आंटी जी थैंक यू, रजनी शर्मा आपका संदेश भी मिल गया है, फरीदा गुलाम अली जी, हेना, भरत गंगाराम, हंसा वोरा शहर भाई, चिंतन के जो प्रेमी हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज का चिंतन समेटते हैं। याद दिला दूं, चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन,
0: आइए लौटते हैं अपने कार्यक्रम के मूल रंग की ओर। सबसे पहले बताते हैं आपको पाउंड का रेट SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And your £1 in British sterling can get you up to how much? 128.15 rupees.

0: is Leica Radio across the Midlands. Leica Radio. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: और भाई आम तौर पर धूप की और गर्मी की मांग करने वाले लोग आज गर्मी से और धूप से राहत मांग रहे हैं। संगीत के माध्यम से बुलावा नील गगन पर उठते बादलों को, कहाँ चले गए आप?

0: feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ में आपने खानदान फिल्म का गीत सुना. और भाई ये खानदान पुरानी वाली 1965 की गीत सुनकर आपको सुनील दत्त साहब याद आए होंगे. आपको बता दें कि सुनील दत्त जी की आज पुण्यतिथि है. आज ही के दिन 2005 में उन्होंने अपनी जीवन यात्रा पूरी की थी. भाई सुनील दत्त साहब एक नेता के रूप में, यानी वो लीडर भी थे कांग्रेस पार्टी के, वो मेयर भी रहे थे मुंबई के, और राजनीति कर वो केंद्र में मंत्री भी रहे, परंतु वो एक सफल अभिनेता. और जब वो अपने संघर्ष की बात करते हैं भाई, उनके जीवन से जब पूछा गया था, किसी ने मेरे पास कहीं रिकॉर्डिंग मिलेगी तो सुनवाऊंगा आपको, कि भाई आपके जीवन के सबसे भावुक क्षण कौन से थे जब आप बहुत इमोशनल हो गए थे, तो कहते हैं जब उनकी पाकिस्तान से वो उजड़कर भारत आए थे बंटवारे के समय, और उनकी माँ उनसे भी चढ़ गई थी, और काफ़ी समय बाद जब वो मिली हैं तो कहते हैं वो बड़े भावुक क्षण थे उनके लिए. भाई कितने लोग उजड़े, कितने लोग अपनी जड़ों से उखड़े, और क्या सीन रहा होगा. हम नहीं थे उस दौर में, पर उस दौर की बातें सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, तो क्या कहेंगे उन लोगों को जो इसके लिए जिम्मेदार थे, खैर साहब इस बंटवारे के जिम्मेदार थे. खैर आज सुनील दत्त जी को हम याद करते हैं, और सुनील दत्त जी के साथ नूतन की जोड़ी बड़ी कामयाब थी, कई फिल्में उन्होंने दी. आज कुछ और फिल्मी हस्तियों का जिक्र करेंगे धीरे धीरे उनके गीत सुनवा करके. स्पेशली करण जौहर आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. भाई वो कहते हैं मॉडर्न ज़माने के अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, लेकिन हम मुझे उन्हें इंटरव्यू करने का कभी मौका नहीं मिला, लेकिन उनके पिताश्री से अच्छी तरह से मुलाकात हुई. उन्होंने फिल्म डुप्लीकेट के लिए मुझे हायर किया था जब मैं उनकी वो फिल्म शोज जो प्रमोट कर रहा था, साथ में जब यहाँ उसके प्रीमियर शो हुए तो मैं स्टेज पर जाता था शाहरुख के साथ, और उनके साथ उनकी पत्नी ही हीरू, यानी इसकी जो है माता जी भी उस करण जौहर की थी, वो भी आई थी. तो यहाँ बहुत सारी फिल्मी हस्तियों से मुलाकात हुई, बहुत सारे पॉलिटिशियंस मिले भारत के, पाकिस्तान के बहुत सारे कलाकार पाकिस्तान से, भाई वो कॉमेडियंस आते थे उनसे मिलना जुलना, वो सब एक इतिहास बनकर यादों में गूंथा हुआ है हमने, लेकिन कहीं रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है आपके साथ साझा करके. राइट, आप जानते हैं क्या सुन रहे हैं, आप कहाँ सुन रहे हैं, किससे सुन रहे हैं.
0: मनोरंजन विद रवि शर्मा. Like a extra podcast updates.
2: भैया लायका एक्स्ट्रा पर जो पॉडकास्ट का हमारा नया एपिसोड है वो आ चुका है. टाइटल है डोमेस्टिक वॉयलेंस, ये जो घरेलू झगड़े हैं. दीप राजा जो है वो होस्ट कर रहे हैं उसको, और आप ज़रूर देखिएगा. इस डोमेस्टिक वॉयलेंस ओनली फिजिकल अब्यूज़ नहीं साहब, जो मेंटल टॉर्चर होता है, शब्दावली से भी जो प्रहार किए जाते हैं, एज साउथ एशियंस डू वी डाउन प्ले द सिचुएशन, ये सारे सवाल उठे हैं उसमें और जवाब ढूंढने की कोशिश की गई है. जरूर देखिएगा लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट, अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Is Leica Radio.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
3: High Appreciation
4: in Dubai.
5: Are we there yet?
6: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
7: Relax, I've booked the Uber already.
6: How? My roaming isn't even working yet.
7: I switched to Simzy before we left London.
6: Simzy? Since when are you the tech expert?
7: Since I decided I want a stress-free holiday.
8: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
9: T's and C's apply.
10: Are you ready to embark on a journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
11: The timeless soul of Qualy returns to the stage.
12: Presenting Bismil Ki Mehfil UK Tour 2026 live in London.
11: Featuring Bismil, India's biggest Sufi sensation.
12: Known for his soul-stirring voice, electrifying live performances and the modern revival of the Mehfil experience.
11: Join us for a mesmerizing night of soulful music and the magic of a true Mehfil.
12: On Sunday the 7th of June at Hackney Empire.
11: Book your tickets now at zeppelinentertainment.com. Exclusive radio partner, Leica Radio.
13: Be part of a historic grand opening.
14: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
13: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
14: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-6333.
13: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
15: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
16: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
15: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
16: दिल तो टूट पे किया,
15: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
17: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
15: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394.

बिक जाए पगड़ी मेरी चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट जा

0: Basmati Rice. Disha Basmati Rice available on special offers at Falcon Cash & Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colourful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to the Oxford Playhouse, 2nd to the 6th of June. For tickets and more info, click oxfordplayhouse.com. Radio partner, Laika Radio.
2: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open, from flame-grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV 11 5BZ. Pepe's Piri Piri, Pepe-licious.
3: Abira, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है. क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो. मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ.
4: अगर हम साथ हैं
3: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे.
5: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर.
6: ये रिश्ता क्या कहलाता है. मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE 392 एंड अप टीवी. प्रेजेंटेड बाय ट्रैवल अप.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स.
7: स्प्रिंग हिट्स ऑन लाइका रेडियो नेटवर्क.

व्हाट अ कंपोजिशन, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें भाई। ये गीत लिया गया था फिल्म पेंटर बाबू से और इसे संगीतबद्ध किया था उत्तम सिंह जगदीश खन्ना ने। एक जोड़ी बनी थी उत्तम जी उत्तम जगदीश नाम से, उन्होंने संगीत दिया फिल्मों में, लेकिन बाद में जगदीश जी की डेथ हो गई और अब उत्तम सिंह अकेले म्यूजिक देते हैं, पर क्या बढ़िया संगीत देते हैं। कट गई

उत्तम सिंह आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, बता दूं भाई, वो जिन्होंने पिंजर, गदर और भाई दिल तो पागल है जैसी फिल्में संगीत से सजाई, और ये गीत पिंटर बाबू से उन्हीं की बनाई धुन पर सुन रहे थे आप। सोनी जी कह रहे वियाना में मुझे तो सब याद है, याद तो मुझे भी है भाई। मैं याद के बारे में हमेशा कहता हूँ कि मेरे को दो ही चीजें भगवान ने बहुत अच्छी दी हैं, एक तो मेरी याददाश्त बहुत अच्छी।

0: on OTSA Plus. OTSA Plus, Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE 392.
1: Presented by South Hall Travel, powered by Tata Tea Premium and Wellman and Wellwoman by Vitabiotics.
2: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में.
3: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7 and with your favorite presenters live? Get the tune-in details at leicagold.com. Feel Good Track. Brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: अपनी गली में बुला रहे हैं भाई, कुमार सानू साहब, जब दिल न लगे दिलदार तो हमारी गली आ जाना। ये दिल्ली तो नहीं लगता ना, पर आपकी गली में भी तो आपने कुत्ते पाल रखे हैं, बड़े खतरनाक भाई। कुमार सानू बुला रहे हैं आपको आज रॉयल अल्बर्ट हॉल में, आज उनका कॉन्सर्ट है, पहुंच जाइएगा। टिकट तो लेने पड़ेंगे भाई, वो जमाना गया जब हम बिना टिकट देख लिया करते थे, इंडिया में सुन लिया करते थे। तो कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत, और भाई से मीठा सा निमंत्रण समझ के आज उनकी कॉन्सर्ट में उनका ये इनविटेशन मान करके पहुंच जाएगा। टिकट ले रखी है तो भाई पहुंचेंगे ही, नहीं ले रखी हो तो आई होप के यू आर एबल टू गेट फ्रॉम द
1: ट्रैक। Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: और साहब आर्टिस्ट ऑफ द वीक इस सप्ताह के लिए नाम आया हमारे पास अनुराधा पोडवाल। बहुत सारी महिलाओं को भाई अपनी सास से शिकायत है, मदर इन लॉ। ये कानून बीच में आ गया, इन लॉ कहते हैं वो बहू में भाई अपनी सास के नाम करवाना चाहती है गीत, जो चरण छू के आशीर्वाद मांगती है तो सास आशीर्वाद देती है, जियो और जीने दो। ऐसा काय को बोला सासू जी, ऐसी थोड़ा ही हूं मैं, ऐसी वैसी नहीं हूं मैं।

0: आर्टिस्ट ऑफ द वीक अनुराधा पोडवाल। वही सासू जी तो सासू जी, बहू भी बड़ी धांसू जी। ये कदर नहीं जानी ना ना। ये सासू जी, ये सासू जी, साड़ी साड़ी कदर नहीं जानी तुझे। यहाँ
1: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
0: कुछ लोग दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अभी मुझे याद, देखिए अगर किसी गाड़ी में बैठी महिला की साड़ी का थोड़ा सा भी पल्लू बाहर है तो पीछे गाड़ी दौड़ाएंगे, मोटरसाइकिल पर पीछा करेंगे और नजदीक जाके बताएंगे, मैडम आपका पल्लू बाहर लटक रहा है।

थैंक्स तो करती जा, तेरा पल्लू लटके बता दिया कितनी दूर तक दौड़ना पड़ा, पीछा करना पड़ा है, अपनी मोटरसाइकिल दौड़ानी पड़ी है। भाई नौजवानी के दिनों में बड़े मददगार होते थे हम भी भाई, वो जो कॉलेज की लड़कियों को कॉलेज तक छोड़ के आते थे, नहीं जाती तो वो अपनी बाइक पे थी लेकिन उनके साथ सिक्योरिटी बन करके जाते थे भाई, और जब उसको कॉलेज छूटता था तो घर तक छोड़ के आते थे, घर से थोड़ी दूरी पे छोड़ते थे, घर तक नहीं जाते थे क्योंकि उनके घर पर भी कुत्ता था।

किसी की मदद करने के लिए बताना भैया आपका वो ठीक नहीं, आपका हमारी यहाँ ना रामलीला होती थी और रामलीला में रावण बड़ा भयंकर था, इतना भयंकर देख के बच्चे डर जाए, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो रावण को भी डरा देते हैं। हाँ सचमुच एक बच्चा था ना, हम क्या होता था कि पीछे लोग कुर्सियों पे बैठे हैं लेकिन छोटे बच्चों के लिए आगे दरी बिछा रखी थी बिल्कुल स्टेज के पास, वो वहां बैठते थे यानी मंच के बहुत नजदीक। अब हमारा रावण बड़ा भयंकर था, तलवार लेके घुमाता हुआ भाई, मूछें बड़ी बड़ी, भयंकर चेहरा, और जब वो स्टेज पर आता युद्ध को लिए ललकारता राम को, तो एक बच्चों की भीड़ में बैठा एक बच्चा कहता, ओए रावण ओए, रावण डर गया शायद कोई पीछे से बोल रहा है कि वो प्रॉम्प्ट देने वाला, तो देखा पीछे तो कोई नहीं था, स्टेज के उधर से इधर उधर नजर उड़ाई तो आवाज फिर आई, वो रावण हो, तो रावण ने ध्यान से देखा ये बच्चों में से आवाज आ रही है, तो एक बच्चा बैठा था, वो रावण आ, रावण कहता की गल है क्या बात है, तो बच्चा कहता है रावण तेरा नाला लटकदा प्याई, तुम्हारे पजामे का नाड़ा जो वो नीचे तक लटक रहा, वो दिखाई पड़ रहा है भाई, तेरा नाड़ा लटक दा प्याई। अब रावण को एकदम बड़ा घबरा गया, वो तो लोग देख रहे हैं, लाइटें पड़ रही हैं उसके ऊपर, तो उसने क्या किया, तलवार घुमाते घुमाते स्टेज के पीछे चला गया, अच्छी तरह से ड्रेस ठीक की, उसके बाद फिर वापस स्टेज पे आया और आकर के फिर तलवार घुमाने लगा तो आवाज फिर आई, रावण ओए, रावण फिर डर गया, कौन है भाई, उस बच्चे को ढूंढने लगा भीड़ में, कहाँ है, वो ही बोल रहा है लगता है, रावण ओए। अब रावण ने पहले तो भीड़ में ढूंढा उसको और भाई वही स्टेज से तलवार घुमाते घुमाते पूछता है, उनकी गलई अब क्या बात है, तो बच्चा कहता है नाला टंग लिया है ना, मतलब कहता है नाला टांग के आ गया, बढ़िया खोपर नाला टंग लिया है, मददगार है भाई, मदद करते हैं तो फिर थैंक्स तो एक्सेप्ट करते हैं ना, एक्सपेक्ट करते हैं। साउथ हॉल ट्रेवल वालों का संदेश है भाई आप तक पहुंचा दें, वो बता रहे हैं कि मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथ हॉल ट्रेवल, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एट ऑल प्रोटेक्शन। वही 40 वर्षों से भी ज़्यादा लंबा उनका इतिहास है, भरोसेमंद है, विश्वसनीय है और ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड के विजेता हैं। विजिट साउथ हॉल ट्रैवल ऑन और कॉल 0208574 8410।

0: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: आपको बता दें भाई, IPL 2026 अपने समापन के नज़दीक का फैसला हो गया। कौन सी चार टीमें अब आगे जा रही हैं प्ले ऑफ में, तो उनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि आज कोई मैच नहीं है, लेकिन कल जो मैच खेला जाएगा, और अरे बाप रे, कल कौन सी चार टीमें जो आगे आई हैं उनमें से कल का मैच होगा 71st मैच ऑफ 74। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच दोपहर बाद 3 बजे ये मैच शुरू होगा। प्ले ऑफ मैच है और देखते हैं इनमें से कौन जीतता है। एक और मैच भाई, दूसरा जो प्ले ऑफ का, वो सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच 27 तारीख यानी बुधवार को खेला जाएगा। और भाई उसके बाद सेमीफाइनल कहिए उसको, वो होगा 29 मई को, और फाइनल मुकाबला 31 मई को खेला जाएगा। स्कोर के आंकड़ों से हम आपको जोड़े रखेंगे और रिजल्ट से, भाई परफॉर्मेंस से, सबसे टाटा IPL 2026 आप घर बैठे आनंद लें लाइका रेडियो नेटवर्क से जुड़ करके। तो साहब कल के मैच का इंतजार है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, कल का मैच जो होगा, और गुजरात टाइटंस। All the best to both the teams.
0: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

प्यारे तेरे प्यार में लुट गए हम बाजार में। ओ ओ ऐसा क्या। वेल गीत है, पसंद आया होगा ऐसी मैं आशा रखती हूँ। आप सुन रहे हैं, साथ दे रहे हैं लाइका रेडियो नेटवर्क पर अपनी प्रेजेंटर सरिता सबरवाल का, हुई सिटिंग इन फॉर बाली ब्रह्मभाजी, और उम्मीद करती हूँ कि मेरा साथ देंगे टिल 4 o'clock। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इन्जॉय कर रहे हैं। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो कम ऑन चेयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इन्जॉय। जी और शान से मुस्कुराते गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए ये गाने तो चुन चुन कर लाई है सरिता आप ही के लिए। पहला गीत था तेरे प्यार में मैं अपना नाम भूली, ये सुबह शाम भूली, सारा जहां भूली, मैं बेकरार। तेरा भी हाल ऐसा, मेरा भी हाल ऐसा, प्यार में ऐसा ही कुछ होता है ना। तो पहले तो सोचा था कि चेन बनेगी गीतों की, हाँ। तो पहला गीत तेरे प्यार में, देन मैं अपना नाम भूली पर, देन शाम, फिर देन सोचा कि तेरे प्यार में वर्ड थी, ये तीनों वर्ड भी बहुत से गीतों में आते हैं, तो क्यों ना यही सिलसिला चलाया जाए। तो आपको भी कोई ऐसा गाना याद आ रहा है जिसमें ये तीनों वर्ड हैं तेरे प्यार में, तो मुझे जल्दी से बता दीजिएगा। नंबर आपका जाना पहचाना है, उस नंबर के रास्ते मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला गीत मैंने फिल्म जोर से चुना था, 1997 की फिल्म थी, एंड इस फिल्म में काम किया था सनी देओल।

0: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है।
1: ऑर्डर ऑनलाइन एट pujasweets.com फ्रॉम बर्फी लड्डू गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज
2: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 और विजिट मेल्टन रोड LE4 5EA
1: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज।
3: Did you know that Like a Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 AM and DAB in London and on the Leica Radio mobile app. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मेरे वो साथी जो बराबर मेरे साथ हैं और अपने होने का एहसास दिला रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. थैंक यू एवर सो मच. और मैं बता दूं कि प्रोग्राम के नेक्स्ट आवर में हम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लक्ष्मीकांत जी को याद करेंगे उनकी पुण्यतिथि पर. और आज ही डेथ एनिवर्सरी है सुनील दत्त जी की, तो उन्हें भी याद किया जाएगा. करण जौहर इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे. कुणाल खेमू इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे. एम जी श्री कुमार इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे. तो ये सभी थोड़ा थोड़ा यस चलता रहेगा. और अगर कोई ख़ास गीत आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का सुनना चाहते हैं या सुनील दत्त जी की फिल्मों से सुनना चाहते हैं, तो आप मुझे लिस्ट भेज सकते हैं. ओके, आपको मालूम है कैसे मुझ तक पहुंचना है, व्हाट्सएप कर सकते हैं.
0: ये है लाइका रेडियो. टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: फिल्म का नाम था जिद्दी, 1964 में आई थी ये फिल्म। ये आवाजें आपने पहचानी, अगर नहीं पहचानी तो बता देती हूँ, गीता दत्तन मन्ना डे की आवाजें शामिल हुई आज के प्रोग्राम में। लाइगर रेडियो नेटवर्क के जरिए हमारी मुलाकात हो रही है आजकल एवरीडे। जी हाँ, आई एम सिटिंग इन फॉर बाली ब्रह्म बच्ची टिल फ्राइडे एंड देन उसके बाद सैटरडे संडे मेरा अपना शो होता है, और कल भी मेरे बहुत से साथियों ने शो को एंजॉय किया ये जानकर बहुत अच्छा लगता है। एंड अब जरा ये काम भी कर लें जल्दी से।
1: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप, सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: राइट, अ पाउंड इन योर पॉकेट कैन गेट यू इंडियन रूपी 128.51, पाकिस्तानी रुपीस 375.77, श्रीलंकन रुपी 441.2 एंड बांग्लादेशी टका 165.72, अफगान अफगानी 85.7 एंड यूएस डॉलर्स 1.35।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: राइट, गोल्ड का रेट इस वक्त मार्केट में 108 pounds and 53 pence पर ग्राम।
1: राम ज्वेलर्स स्पेशलाइजिंग इन डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, 22 कैरेट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड ज्वेलरी, कॉइन्स एंड गोल्ड बुलियन बार्स। विजिट राम ज्वेलर्स ऑन 116 बेलग्रेव रोड, लेस्टर, और कॉल 0116 266 4278।
2: Hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m., Leica Gold and Leica Radio Midlands.

0: लता जी की वेरी यंग वॉइस में आपने ये गीत सुना. साधना जी पर, साधना थी इस फिल्म की हीरोइन एंड हीरो थे राजेंद्र कुमार साहब एंड निशी निम्मी भी थी इस फिल्म में. और कौन था, अशोक कुमार जी का भी बहुत अच्छा रोल था. आई थिंक अशोक कुमार वॉज साधनाज ब्रदर इन दिस फिल्म. येस आई थिंक सो. एंड नौशाद साहब का संगीत था, बहुत खूबसूरत सारे के सारे गाने थे. जो भी गाना ले लें, मेरे महबूब का टाइटल ट्रैक ले लें, वो भी बहुत खूबसूरत था. ए हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए एंड और कौन सा गाना था, याद में तेरी जाग जाग के हम, ये सारे गाने बड़े मशहूर हुए थे. आपको, आपने फिल्म देखी हुई है, अगर देखी हुई है तो आपको पता होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, कि ये फिल्म बहुत खूबसूरत थी. चलिए भाई अब जरा क्रिकेट का हाल देखें. आज वैसे कोई मैच है?
1: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: Right, आज IPL का कोई भी मैच नहीं है और कल दोपहर 3 बजे मैच शुरू होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स के बीच में. एंड जब मैच होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे. आज कोई बहाना नहीं है कि हम लाइका रेडियो नेटवर्क के साथ नहीं जुड़े हैं, लाइका गोल्ड सुन रहे हैं लंदन और आसपास के इलाकों में, जिस भी इलाके में है, जिस भी जरिए को चुना है आपने, आप सबका स्वागत, आपका खैर मकदम करती हूँ. ज़हीर खान साहब कराची में हैं आप और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, थैंक यू.
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस. डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे. Remitly UK लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. Bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
0: जी हाँ, जेमिन के जरिए ये प्रोग्राम आप सब तक पहुंचता है. एंड अगला गीत जसविंदर नरूला की आवाज में है, वो हमें पहुंचाएगा न्यूज तक.
3: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी. मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 34.99.
3: हमजा समोसा 3 for 10.
4: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p.
3: सुहाना मसाला 2 for 150. रामदेव नमकीन 2 for 149.
4: हीरा ग्राम फ्लावर 179. हाइंस केचप 279.
3: केसर मैंगो पल 149. फूल मखाना 245. फाल्कन कैश एंड कैरी
4: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN.
3: व्हाइल स्टॉक्स लास्ट.
5: आर यू रेडी टू एम्बार्क ऑन द जर्नी ऑफ अ लाइफटाइम? Look no further than Citybond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
6: Packed for the trip? Gifts? Passport?
7: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
6: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
7: Simzy?
6: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
8: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
9: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colourful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to the Oxford Playhouse 2nd to the 6th of June. For tickets and more info, click oxfordplayhouse.com. Radio partner Laika Radio.
10: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
11: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न एवरी
8: transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
12: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. And Indian summer is back.
13: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
12: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
13: Or sales at leicamedia.co.uk. LenFi means quicker and safe way to send money.
12: LenFi means low transaction fees and great exchange rates.
13: LenFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKA.
12: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LenFi. Download the LEMFI mobile app today.
14: LenFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
15: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
16: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
1: Leica Radio Network. This is Leica Radio across the Midlands.

0: गीत आपने सुने बैक टू बैक, वन फ्रॉम सौदागर. सौदागर के एक्चुअली इलू इलू गाना बड़ा मशहूर हुआ था और इमली का बूटा भी बहुत मशहूर हुआ था, लेकिन सुखविंदर सिंह की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने प्रोग्राम में शामिल किया. एंड दूसरा गीत प्रेम रोग से था, इसके भी सारे के सारे गाने बड़े मशहूर हुए थे, लेकिन मैंने चुना लता जी की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत. उम्मीद करती हूँ दोनों के दोनों गीत आपको पसंद आए होंगे. प्रोग्राम के इस आवर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीतबद्ध किए हुए कुछ एक गीत आप सुन पाएंगे. आज हम याद कर रहे हैं लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर जी को, जो एक प्रसिद्ध संगीतकार थे और उन्होंने प्यारेलाल शर्मा जी के साथ मिलकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मशहूर जोड़ी बनाई थी. इस जोड़ी ने 1963 से 1998 तक सैकड़ों फिल्मों में संगीत दिया. लक्ष्मीकांत जी का जन्म 3 नवंबर 1937 को मुंबई में ही हुआ था और बचपन में आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया. वो मैंडोलिन बजाने में बहुत निपुण थे एंड उनकी पहली बड़ी सफल फिल्म थी दोस्ती, और गाना चाहूँगा मैं तुझे वो गाना बड़ा मशहूर हुआ था. एक प्यार का नगमा है, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी कई सुपरहिट गीत उन्होंने दिए. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने लगभग 5,000 गीतों की धुनें तैयार की. उन्हें कई बार फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार मिला. लक्ष्मीकांत जी का निधन आज ही के दिन इन 1998 में हुआ था और आज हम उनकी पुण्यतिथि पर उनके कंपोज किए हुए कुछ एक गीत आप तक पहुंचा रही हूं मैं. उम्मीद करती हूं कि आपको पसंद आएंगे. आपको चॉइस भी दूंगी, लाइक बॉबी का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे, मैं शायर तो नहीं, या फिर अखियों को रहने दे अखियों के आसपास. कौन सा गीत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सुनते ही हैं आप, पर आप रेयर सुनना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं कौन सा गीत आपके दिल के करीब है. मैं शायर तो नहीं, या फिर अखियों को रहने दे अखियों के आसपास. ए और बी, ए इज़ मैं शायर तो नहीं, बी इज़ अखियों को रहने दे. तो जल्दी से मुझे बता दीजिएगा.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर इनके ज़रिए पैसे आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आज आपका 1 British sterling pound कैन गेट यू 128 rupees and 15 paisas. सेंड मनी टू इंडिया वाई SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ 75 pounds वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1,000 pounds. ऑल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2,000 pounds. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors

0: Well, बहुत से वोट्स मुझे मिले, किसी ने ए सुनना चाहा तो किसी ने बी, पर बाजी ले गया नंबर बी. सो उम्मीद करती हूँ लता जी की आवाज में गायक हुआ ये गीत आपने थरली एंजॉय किया. थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेजेस.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: भाई किशोर कुमार के फैंस के लिए एक खुशखबरी है. स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग केतन, इंद्रानी, संजय एंड 515 बैंड एंड इट इज टेकिंग प्लेस ऑन फ्राइडे 19th June एट द प्रिंस रिजेंट होटल चिगवेल एसेक्स में. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो, लाइका गोल्ड रेडियो.
1: लाइका रेडियो Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: Confusion तो बहुत रहती है, कौन सा गीत शामिल किया जाए, कौन सा आपको ज्यादा पसंद आएगा. दो रास्ते के सारे गाने बड़े मशहूर हुए थे बिंदिया चमकेगी से. कोई भी गाना ले लें आप इस फिल्म का, छुप गए सारे नजारे, पर मैंने चुन लिया है ये.

0: रहे। Sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: राइट भी बहुत प्यारे प्यारे गीत हैं और बहुत सारे मैसेजेस भी हैं जो मैंने प्रोग्राम में शामिल करने हैं और मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं दे पा रही हूँ, पर बता दें कि रागासन लाइक रेडियो नेटवर्क हैज़ कन्फर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन। डिटेल्स आर ऑन अवर laikaradio.com पर। आतिफ असलम का शो है, लाइक रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ आतिफ असलम्स लंडन कॉन्सर्ट taking place on Sunday 14th June at the O2 London. Tickets available at AXS and the venue. Like a radio. और ये क्या कहना चाह रहे हैं, राइट, ये हमने आपको बता ही दिया है, अब आगे बढ़ते हैं।
2: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।

गीत के साथ बोलने की माफी चाहती हूँ, इतना खूबसूरत गीत है ये गाना, बहुत सुपर हिट, सुपर से भी ऊपर वाला हिट है गाना।

0: जब याद आए, बहुत याद आए।
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल began their career in 1963 by composing music for this film Paras Mani, and it proved to be financially successful, and two songs from this film Hansta Hua Noorani Chehra and Wo Jab Yaad Aaye were super duper hit gaane. They established themselves the following year when they composed the soundtrack for Dosti Jaane Walo Suno Wo Wala Kya Jaane Walo Zara Mur Ke Dekho Mujhe Chahunga Main Tujhe Saanj Savere Mera To Jo Bhi Kadam Hai Koi Jab Raha Na Paaye Sare Gaane Super Duper Hit Huye The And Inko Bahut Sare Awards Bhi Mile Apart From Dosti Their Other Musical Hits During The Period Mr. X In Bombay In 64 Aaye Din Bahar Ke And Mere Mehboob Qayamat Hogi Kaise Bhul Sakte Hain In Geeton Ko Lakshmikant Pyare Lal Ji Ne इतने सारे गीत कंपोज किए हैं कि क्या चुनूं क्या छोड़ूं मुझे पता नहीं चल रहा है. राइट, अब ये मैसेज भी पहुंचा दें आपको. मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथ हॉल ट्रेवल. एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मूव विद द हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड्स फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटॉल प्रोटेक्शन. ट्रस्टेड फॉर ओवर 40 ईयर्स एंड विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रेवल award as well. And visit South Hall Travel or call them on 0208 574 8410.

0: ये गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म वापस. और बता दें कि आफ्टर लक्ष्मीकांत्स डेथ, उनके गुजर जाने के बाद भी प्यारे लाल हैज डन सम वर्क इंडिपेंडेंटली, येट प्यारे लाल ऑलवेज यूज द नेम लक्ष्मीकांत प्यारे लाल फॉर ऑल द फ्यूचर कॉम्पोजिशंस. एक बात और सुनने में आई है कि जब फराह खान ने ओम शांति ओम बनाई थी द सॉन्ग धूमताना इन 2009, प्यारे लाल वन द सचिन देव बर्मन इंटरनेशनल अवार्ड फॉर क्रिएटिंग क्रिएटिव साउंड एंड म्यूजिक एट द पुणे फिल्म फेस्टिवल. प्यारे लाल हैज डन अ शो विद द काकाज एंटरटेनमेंट कॉल्ड माइस्ट्रोस A Musical Journey of लक्ष्मीकांत प्यारे लाल. सो जो धूमताना गाना था उसमें इनकी इनपुट थी प्यारे लाल जी की. सो पता नहीं मुझे कि आप अवेयर थे इस बात से या नहीं.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, भी बता दें कि इस वक्त आपको एक पाउंड के बदले मिल सकते हैं इंडियन रुपीज 128.58, पाकिस्तानी रुपीज 375.63, श्रीलंकन रुपी 441.71, बांग्लादेशी टका 165.71, अफगानी 85.28 एंड US डॉलर 1.34.
1: Like a radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: राइट, गोल्ड का रेट इस वक्त मार्केट में 108 pounds and 53 pence पर ग्राम.
1: Jewelers specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278.
0: भी आप सोच रहे होंगे कि सरिता हंस क्यों रही है. इसलिए हंस रही हूँ कि बहुत सारे मेरे साथी लिखते हैं कि क्या बात है, कोई भी गाना हमारे नाम नहीं करना. नहीं भाई, नहीं, सारा प्रोग्राम आपके नाम है. संध्या भाव सर जी, अरुणा जी, विजय जी, थैंक यू सो मच. सूरज फ्रॉम साउथ ऑल इंजॉय कर रहे हैं आप भी प्रोग्राम को. एंड रितेश जी, दिनेश पोपट जी एंड सिंधु शिशुपालन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आई होप मैंने आपका नाम ठीक लिया है. सतविंदर पोली, विरदी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. इंजॉय करें. अर्जुन जी, पम्मी जी, संतोष जी, आप सभी सुन रहे हैं. जहीर साहब, आप इन कराची. जैस्मिन, विजय कनोवा, मिसेस शेख, थैंक यू. तोची जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. अमरजीत, आप भी प्रोग्राम इंजॉय करती हैं. जगदीश जी, बुशी में आप सुन रहे हैं. कुछ और नाम है, जरूर मैं अभी लेती हूँ, जरा थोड़ा सा इंतजार.
1: LIKA Radio is now available across Coventry on DAB. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England Cricket.
0: Right, cricket update. आज कोई भी मैच नहीं है, लेकिन कल मैच होने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच में. और कल जब मैच होगा तो हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे.
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
0: Right, हंसा बोरा जी, सलमान मेडस्टन कैंट में प्रोग्राम सुन रही हैं. फरीदा गुलाम अली जी, भरत गंगाराम जी, सहर जी, मृदु जी, उल्लास इन टोरंटो, जीतू भाई मिल्टन किन्स में सुन रही है, तोची जी, रजिंदर सिंह कालरा जी, अशोक बाली जी, आप सभी का तह दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. और हाँ, कल मेरी मुलाकात हुई थी हिना जी आपसे एक रेस्टोरेंट में, मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा था. और आप भी सुनती हैं और कहती हैं कि मैं हमेशा सारे के सारे प्रोग्राम्स इंजॉय करती हूँ. प्रोग्राम के इस आवर में मैंने लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी की कुछ धुनें शामिल की हैं. अगला गीत मुकेश जी की आवाज़ में जो आप सुन पाएंगे फ्रॉम द फिल्म पुष्पांजलि, कौन सा गीत हो सकता है इसके बारे में सोचते रहिए. और पहले सुनते हैं ये वाले मैसेजेस.
2: गोल्ड आफ्टरनून प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय जैमिन फूड्स, द ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ इंडिया. दाल भात, पाव भाजी, बिरयानी, बस पेट संभाल जो, क्योंकि क्रेविंग्स बढ़ने वाली है. लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी, मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99,
2: हमजा समोसास 3 for 10,
3: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p,
2: सुहाना मसालास 2 for 150, रामदेव नमकीन 2 for 149,
3: हीराग्राम फ्लावर 179, हाइंस केचप 279,
2: केसर मैंगो पल 149, फूल मखाना 2 for 5, फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN.
2: While stocks last.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just 711,000 pounds.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: Weddings, celebrations, corporate events. At Rugasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit Rugasan.com to begin your journey. Rugasan, locate, design, manage, cater.
9: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
10: Discover Kailash Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
9: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
10: Also explore 2026 cruises
9: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162 167 225.
11: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स.
12: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट.
11: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स.
1: Your favorite show on Leica Radio Midlands. You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network, the Leica Group, home of Leica Radio and Leica Gold.
13: Leica Radio.
14: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 01164710697 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk.
1: दिस इज लाइका रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स.

0: एमजी श्री कुमार और लता जी की आवाजें शामिल थी फ्रॉम द फिल्म दिल से। और प्रोग्राम के इस आवर का आगाज करने से किया मैंने कुछ कुछ होता है कि एक गीत के साथ, क्योंकि आज करण जौहर भी अपना बर्थडे मना रहे हैं, उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। एक्चुअली उनका रियल नाम जो है राहुल कुमार जौहर है, पर करण उन्होंने चेंज कर लिया। यस, नेशनल फिल्म अवार्ड इन्हें मिले हैं, इसके अलावा बहुत से फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में इन्होंने बनाई हैं। अब ज़्यादा तो नहीं है ना, तो हम 2000 से ऊपर तो जा नहीं सकते, तो कुछ कुछ होता है। 1998 में बनी थी ये फिल्म, सो हमने उन्हें हैप्पी बर्थडे कहा इस गीत के साथ साथ, और उनकी अचीवमेंट्स के लिए उन्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ये करण जौहर और फिर एम जी श्री कुमार, उनकी आवाज़ शामिल रही इस गीत में, दिल से का गीत, जिसे ए आर रहमान साहब ने कंपोज किया था। एंड इन्होंने भी बहुत सी डिफरेंट लैंग्वेजेस में गीत गाए हैं, प्लेबैक सिंगर, कंपोजर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, टेलीविजन प्रेजेंटर एंड ऑल्सो अ फिल्म प्रोड्यूसर। एंड इन्होंने मलयालम सिनेमा में बहुत काम किया है, 2500 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, इन मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी एंड संस्कृत में। सो मैंने दिल से का ये गीत चुना और उम्मीद करती हूँ आप सब ने इंजॉय भी किया। और प्रोग्राम के इस आवर में अब एक गीत, आज की हमारी जो आर्टिस्ट ऑफ द वीक है वो है अनुराधा पौडवाल जी, उनकी आवाज़ में फिल्म साजन का गीत मैंने चुना है, उम्मीद करती हूँ आप पसंद करेंगे। एंड उसके बाद फिर सुनील दत्त जी को हम याद करेंगे उनकी डेथ एनिवर्सरी पर, कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और बाकी उनकी फिल्मों के कुछ गीत।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, अगर इनके जरिए पैसे आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो your £1 in British sterling can get you up to £128.15. And you can send money to India via SBI YONO app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Is proudly sponsored by Gemin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Gemin Foods, the authentic taste of India. Lister, itna sasta deal dekha hai kabhi?
3: Nahi, to chalo Falcon Cash and Carry. Mustafa Basmati XXL Rice 40 lbs, sirf $24.99.
2: Hamza Samosas 3 for 10.
3: Top Star Fried Onions, only 99p.
2: Suhana Masalas 2 for 150. Ramdev Namkeen 2 for 149.
3: Hira Gram Flour 179. Heinz Ketchup 279.
2: Kesar Mango Pulp 149. Full Makana 245. Falcon Cash and Carry
3: 82 Assistant Street LE12JU. Ya Rowlatt Hill LE54UN.
2: While stocks last.
4: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of

भाई कभी कभी गाने भी जंप कर जाते हैं। मैंने गाना सुनाना था ये वाला, क्योंकि अनुराधा पौडवाल जी हैं इस हफ्ते की हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक, और इस गाने के लिए तो इनका नाम भी नॉमिनेट हुआ था फॉर द बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर। वैसे पद्मश्री से इन्हें नवाजा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में। मोहम्मद रफ़ी अवार्ड मिला था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से।

0: समीर कलिका गीत, नदीम श्रवण जी का संगीत, अनुराधा पौडवाल की आवाज आपको हर प्रोग्राम में सुनने को मिलेगी इस हफ्ते। ये हैं आर्टिस्ट ऑफ द वीक। और अब हम श्रद्धांजलि देते हैं सुनील दत्त जी को, जिनकी आज पुण्य तिथि है। उनका निधन 25 मई 2005 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। एंड यू नो उनका असली नाम क्या था? बलराज रघुनाथ दत्त, पर आप सभी उन्हें सुनील दत्त के नाम से अच्छी तरह से जानते हैं। वो हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और समाज सेवी थे। उन्होंने लगभग 100 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया और उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में मदर इंडिया, पड़ोसन, वक्त और साधना शामिल हैं। इसके अलावा उनकी बहुत सी फिल्में हैं जो मुझे भी बहुत पसंद हैं। एंड नरगिस जी उनकी पत्नी थी और संजय दत्त उनके बेटे हैं। वे केवल अभिनेता ही नहीं बल्कि एक सफल राजनेता भी थे। उन्होंने कई बार लोकसभा सांसद के रूप में सेवा की है और समाज सेवा और शांति के लिए उनके कार्यों को आज भी याद किया जाता है। उनकी पुण्यतिथि पर फिल्म जगत और उनके प्रशंसक सभी उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो मैं शुरू कर रही हूँ इस प्यारे से गीत के साथ जो फिल्म हमराज से चुना है मैंने।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: वैसे तो सुनील दत्त जी की हर एक फिल्म मुझे बहुत पसंद आई. मुझे जीने दो वॉज वेरी गुड एंड ही गॉट द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर. इसके अलावा यादें में उनके नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म. देन खानदान के लिए ही वन द अवार्ड. पद्मश्री मिला इन 1968. बहुत से अवार्ड्स मिले हैं लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा अवार्ड होता है जनता का प्यार. वो उन्हें बेहद मिला.
0: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: Aur ye geet maine chuna hai from the film Sujata. I can still visualize telephone par gaate hain. Yes.

0: काश कि मैं सारी गाने आप तक पहुंचा पाती, लेकिन वक्त है कि तेजी के साथ दौड़ रहा है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: राइट, करेंसी का रेट इंडियन रुपीस आपको एक पाउंड के बदले मिल सकते हैं 128.57, पाकिस्तानी रुपी 375.64, श्रीलंकन रुपी 442.69 एंड बांग्लादेशी टका 165.67, अफगानी 85.4.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LYCA. This is LIKA. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: राइट, गोल्ड का रेट इस वक्त मार्केट में 108.53 पर ग्राम।
1: राम ज्वेलर्स स्पेशलाइजिंग इन डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, 22 कैरेट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड ज्वेलरी, कॉइन्स एंड गोल्ड बुलियन बार्स। विजिट राम ज्वेलर्स ऑन 116 बेलग्रेव रोड, लेस्टर, और कॉल 0116-266-4278। दिस इज लाइका रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स। India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: Right, भी आज तो कोई मैच नहीं है IPL का, लेकिन कल मैच होने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच में, एंड कल दोपहर 3 बजे मैच होगा।
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. LIKA Radio.
0: ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा साथ पसंद किया। अगला गीत ये मेरा साया फिल्म से आप सुनने जा रहे हैं। राजवीर इज नेक्स्ट सिटिंग इन फॉर सैंडी शाह, तो उनका आप साथ देंगे। मुझे माइक्रोफोन के इस तरफ से अब इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलूंगी 1 बजे की खबरों के बाद। हैव ए लवली एंड सुपर्ब डे, बाय फॉर नाउ।

0: लिए एक नई मोहब्बत की दास्तां, तुमसे तुम तक, हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: अभी यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803-EE392 एंड अप टीवी, प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स।
5: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
6: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
7: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. 90s throwback plays now.

0: presented by South Hall Travel, powered by Data T Premium and Wellman and Wellwoman by Vitabiotics.
1: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 Belgrave Road, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड मेमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में.
2: Punjab, the biggest tunes.

0: face? Has their face fallen on one side? Can they smile? A. Arms. Can they raise both arms and keep them there? S. Speech. Is their speech slurred? T. Time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.
1: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
2: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
3: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
2: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
3: दिल तो टूट पे किया.
2: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
4: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
2: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी. गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT394.
5: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है.
6: ऑर्डर ऑनलाइन एट poojasweets.com. फ्रॉम बर्फी, लड्डू, गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया. फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट, पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज.
7: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 और विजिट मेल्टन रोड LE4 5EA.
6: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज.
8: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK.
9: Hi, it's Ankit Tiwari.
10: Hi, it's Ankit Tiwari.
9: Keep listening to Leica Radio.
11: Leica Radio.
8: Go online, listen and listen back. LeicaRadio.com.

0: मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: अभी ना यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803 EE 392 एंड यप टीवी, प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स।
5: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-6333 now. That's 020-3773-6333. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: Leica Radio Network, broadcasting across the UK with Asian stations. Leica Extra Podcast, be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम बुक योर टिकट्स नाउ विजिट www.eventimapolo.co.uk एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर रेडियो
1: 105 शोज पूरा कर्या पछी हवे लेस्टर मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक
2: जेज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रे जो हसमण जी
1: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनो फुल डोज 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मा बे शानदार शोज बपोरे 8 वागे अने सांजे 7 वागे टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655 मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk सखना रे जो हस्बैंड जी
3: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
0: ये है लाइका गोल्ड

0: लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते laikaradio.com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी।
1: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount, plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
2: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 01164710697 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
3: Easing you through the night with the Midlands biggest Asian hits on Laika Radio.